गले लग के मिले, तेनू गल ना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गए यार। ते नाले कहन लगे दिए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नू देखे है, तू आई है, कुछ भरोसा होया मन नू कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे पाईया जय राव अपनी सौरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मथा टेके, मेहता जी ने प्यार दिता ते पाईया जय राम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए, असी ते इस आस ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज दे दर्शन होणगे। पाईया जय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे पाईया लगदे ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने, पर ओह रिश्तेदारी कट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा ने। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो, मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते है, भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्होंने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने, ता बेबे नानक जी कहन लगे हाली आए थे नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी, बहार ने आना होवे कुंजां दियां डारां पहला उड्डन लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाई अजय राव गुरु नानक साहब दी याद विच जंगल वाल तुर पए, एक दरख दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब दा उचारिया होया ए शब्द गान लग पए, अमली अमल ना अंबड़े मच्छी नीर ना होए, जो रते सह अपने तिन भावे सब होए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदा, अमल तो बगैर जी नहीं सकदा, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी, असी भी तेरे नाल इस तरह ही प्यार करने हैं, तेरे बगैर असी भी जी नहीं सकते।

वंश मेरा खानदान वधे और दुनिया दे विच ए देखदे आ कि जिदे घर ती पुत्र ना होवे रिश्तेदार भी उन्हां नूं ताने ते मेणे मारदे ने।

गुरु अर्जुन देव जी महाराज हुण इह तां गुरु नानक दी मेहर है कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज गुरु नानक दा रूप बन गए पर पृथ्वी चंद जिन्हां दा सुभाव माया वाला ईरखा वाला दुबदा वाला सी और महादेव

ना कोई धी ना कोई पुत्र ते जिदे घर धी पुत्र ना होवे लोग उसनू औतर नखत्र कहंदे ने। सत्संगत ए जड़े लफज बाबा पृथ्वी चंद ने वरते ओ लफज असी नहीं बोल सकते पर अगर बोलिए ना इतिहास पूरा नहीं हुंदा। पृथ्वी चंद कहन लगा कर्म कौरे मेरे छोटे भरा दे घर ना कोई धी ना पुत्र इन्हां ते दुनिया तू औतरिया चलिया जाना ए सारा कुछ साडे पुत्र मेहरबान ने सामने। पृथ्वी चंद ने यह गल उची सारी सुनाण वास्ते कही सी। ए गल नौकराणी ने सुनी नौकराणी भजी भजी गुरु अर्जन देव जी महाराज दी धर्मस पत्नी माता गंगा जी कोल गई और चरना ते सिर

बड़ी धूड़ उड़ रही है, कौन आ रहे? ता सेवका ने कहा, बाबा जी गुरु के महल आ रहे ने पाव, गुरुवर्जी नु साव दे धर्म सुपत्नी आ रहे। ता बाबा बुढ़ा जी ने सहस बा वचन कीता, गुरु पिया नु किधरू भाजना पै गई। माता गंगा जी आए, लंगर छकाया, पर बाबा जी ने पुत्र वास्ते कोई अरदास ना कीती। माता गंगा जी उदास होके वापस चले गए और गुरु अर्जन साहब नु कहा, महाराज बाबा बुढ़ा जी ने पुत्र वास्ते अरदास नहीं कीती, सगा कहा कि गुरुआ नु किधरू भाजना पै गई, गुरु के महल नु

नहीं, जदों किसे कोलो कुछ मंगी दे ते निमरता विच और न्यों के जाई दे। अमृत वेले उठो, बाणी पढ़ दे होए आप हत्थां दे नाल प्रशादा बनाओ।

जप गोविंद गोपाल लाल राम नाम स्मर तो जीवे फिर ना खाई महाकाल कोट जन्म भरम भरम भरम आय कोट जन्म भरम भरम

मैं तेरे रस रस गुण गाऊं, मन करके तेरी मैं शिव सला करा, मन करके तेरी भक्ति करा। एक हन गुण गाने, एक है रस रस गुण गाने। गुण गाउंदिया तो भाई कई मेरा मन गैर हाजिर भी हो सकता, पर जिन्हां ने तेरे रस रस गुण गाए हन उन्हां नूं तां आपे दी भी सुध नहीं रही, उन्हां नूं तां अपना आप भी विसर गया। इसलिए ये अमोलक दात है कि मैं तेरे रस रस गुण गावां, तेरे विच गुआच जावां, तेरे गुण गाउंदिया मेरी सुरत तेरे चरण

मोरे हृदय बसो गोपाल। गोपाल भी उना दे हृदय विच वसदा भाई जो उस दे रस रस गुण गाउंदे हन। अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दा निवास भी उना दे हृदय ते ही होया जिन्हां ने उदे गुण गाए। एक दर्शन करना है, एक दर्शना तो रस मानना है। दर्शन तो सारे ही करते हैं पर दर्शना तो रस मानना एक अमोलक दात है, एक अमोलक वस्तु है। भाई साहब भाई नंद लाल जी जो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे 52 कविया विचों श्रोमणी कवि सन, आप बड़े उग्र तपी सन। पता नहीं कितने जन्मां दी आप दी तपस्या सी जिस दे सदके रसक बैरागी दुष्ट दमन दाता गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जैसा उन्हां नूं गुरु मिल गया। एक समय दा जिक्र है कि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह भाई नंद लाल जी ते अति प्रसन्न होए ते कहन लगे नंद लाल साडा जी करदा कुछ मंग। किडियां खुशियां होंदियां हन जदों पिता आप अपने पुत्र नूं कह रहा होवे बेटा तू बड़े चंगे कर्म कीते हन, तू बड़े चंगे कम कर रहा है ते मेरा जी करदा तू कुछ मंगे। अज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने कहा नंद लाल साडा जी करदा तू कुछ मंग। भाई साहब जी दे नैन कटोरे भर आए, ओ मेरा दे साई ओ बख्शिशां दे दाते इस कीट नूं कह रहे हो कुछ मंग। हां तैनू ही तो कह रहे हां तो फिर जे कृपा करन लगे हो तो फिर मेरे ते ए कृपा करो के दीते अंबरा लज्जते दीदार बख्श। ए दीदे ए जो अखां हन ए आपदा दर्शन तो कर रही हन पर इना विच रस नहीं है, वो रस तेरी कृपा द्वारा प्राप्त हो सकता है। इसलिए जे टुटे हो तो दीदे अंबरा लज्जते दीदार बख्श, इना नेत्रां विच लज्जत बख्श तेरे दर्शना तो पूरन आनंद मान सकन। सीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, इस सीने विच मेरे हिरदे विच तेरे सिमरन भी भुख लग पवे। क्योंकि भुख ना लगे तो कितने भी स्वादिष्ट पदार्थ सामने पए होन ओ चंगे नहीं लगते, ते जे भुख लगी होवे तां साधारण पदार्थ भी बड़ा स्वादिष्ट लग रहा होंदा है। उच्चारण करो श्री। इसलिए भाई साहब कहिंदे हन हे कलगीधर पातशाह जे तुठे हो तां सच्चे नाम दी तेरे सिमरन दी मेरे हिरदे विच भुख लग पवे। साचे नाम की लागे भूख उत भूखे खाए चलिए दुख। जिन्हां नूं सच्चे नाम दी भुख लग गई भाई जन्मां दे कीते होए पाप उन्हां दे मिट गए। क्योंकि सच्चे नाम दी जिथे भुख है उथे पाप ठहर ही नहीं सकते। उच्चारण करो श्री। इसलिए भाई साहब ने यह दात मंगी दीदा अंबरा लज्जते दीदार बख्श, सीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, ई दिले बिरयाम मारा शोक दे। भाई साहब कहिंदे हन कि मेरा दिल विषय विकारां दी अग विच पुज चुका है ते तेरी कृपा होवे तां प्रेम मिल सकदा है, तां प्रेमा भगती मिलदी है जे गुरु दी कृपा होवे। इसलिए इस पुज चुके हुए दिल नूं प्रेम ला मैं तेरे चरणां विच जुड़िया रहां, मेरा मन तेरे चरणों विच जुड़िया रहे। ए शरीर देश होवे परदेश होवे घर होवे बाहर होवे दुख विच होवे सुख विच होवे हे वाहिगुरु मेरा मन तेरे चरणों विच जुड़िया होवे।
दीदा अंबरा लज्जते दीदार बख्श, सीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, ई दिले बिरयाम मारा शौक दे, दर गलूयम बंदगी दा तौक दे। तौक कहंदे हन पटे नूं, ते भाई साहब नंद लाल जी कहंदे हन मैं तेरे दर दा कूकर हां, ते ओ कूकर मालक दा खवांदा है जिस कूकर दे गल विच पटा होवे। आख्या मेरे गल विच पटा पा के मैनू आप दा बना दे। ए पटा केड़ा है जो भाई साहब नंद लाल ने कहा, आख्या बंदगी दा पटा मेरे गले विच पा। श्वासा दे अंदर बार आंदियां जांदियां मैं जपदा रहा श्री वाहे गुरु। आख्या होर भी कुछ मंगना है, ता भाई साहब कहंदे ने कुछ होर भी मंगना है, क्योंकि आप तुठे हो। आपने कहा कुछ मंग, मैं तदे ही तो मंग रहा। आख्या मंग भाई होर की मंगता है, ता भाई साहब नंद लाल जी कहंदे ने हिजर मारा आरजूए वसल बख्श, तेरे मिलन दी शिक मेरे हिरदे विच वसी रहे। क्योंकि जिस हिरदे विच ईश्वर दे मिलन दा प्यार नहीं, ओ हिरदा हिरदा नहीं है, ओ ता एक शमशान भूमिका है। जिस तरह शमशान भूमिका विच मुर्दे जलदे रहिंदे हन, आख्या ओ हिरदा भी ऐसा ही तपदा रहिंदा है, जलदा रहिंदा है, जिस हिरदे विच साईं दे मिलन दा प्यार नहीं है। उचारण करो श्री हिजर मारा आरजूए वसल बख्श, ई खजाने चश्म मारा फजल बख्श, हर सरे मुयम जुबां कुन आज करम। भाई साहब कहंदे हन हे गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह, जे प्रसन्न होए हो तो फिर जितने मेरे शरीर दे रोम हन इन्हां नूं जीभा ला दिओ। हर शरीर दे नाल 7 करोड़ रोम हुंदे हन। ते भाई नंद लाल जी कहंदे हन कि हे गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह, क्योंकि असी कलयुगी जीव हां, ते कलयुगी जीवां दी उम्र भी छोटी है, दिन रात भी छोटे हन, ते मैं चाहुंदा हां थोड़े समय विच मैं तेरा बहुता जस करां, वध तो वध तेरे गुण गावां। इसलिए मेरे हर शरीर दे रोम ते जीभा ला दे, ते फिर एनियां जीभा नाल मैं की करां। आख्या हिजर मारा आरजूए वसल बख्श, ई खजाने चश्म मारा फजल बख्श, हर सरे मुयम जुबां कुन आज करम। ता बिगोयद विश्व हकरा दम बादम, दम बादम मैं तेरे गुण गावां। ते की मंगा मैं, ए मंगा तेरे कोलों के रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय।

आप केस सुखा रहे हो। अमृत वेले दे दीवान दी समाप्ति होई, अपने स्थान ते आके आप केस सुखा रहे हन। ते सूरज दी पहली किरण जदों निकली ते आप दे केसां दी तार ते जदों पई ना, ते भाई साहब जीतां विचों वेख रहे सन ते विस्माद हो गए उस केसां दी तार नूं वेख के। ते आप कहंदे ने दीन दुनिया दरक मंदे, ए दीन ते दुनिया तेरी जुल्फां विच वधे होए हन, इउं मालूम हो रहा। तेरे एक रोम तो मैं दो जहान भी वार देवां तां वी घट हन। दीन दुनिया दरक मंदे आपरी रुख सारे मां, हर दो आलम कीमत यक तार मुए यारे मां। मान में आरे मताबे गमजे मैं गाने हूं, मेरे पास केड़ी वस्तु है जो मैं तेरे तो वारा। मान में आरे मताबे गमजे मैं गाने हूं, गमजे मैं गाने हूं। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल जां गुर देखा शमन। मेरा तन मन निहाल हो गया, मैं सदके हो जावा तेरे एक एक केसा दे रोम तो। जिथे मेरी नजर जा टिकी है तो भाई जो अपने गुरु तो सदके जांदे हन बलिहार जांदे हन, उना दा ए लोक भी सुखी होंदा पर लोक भी सुहेला होंदा। तो भाई साहब कहंदे न हर दो आलम कीमत यक तार मुए यारे मां। मान में आरे मताबे गमजे मैं गाने ऊ, यक निगाहे जा फिजाए बस बवद दरकारे मां। गाहे सूफी गाहे जाहद गाह कलंदर में शवद, रंग हाए मुख्तलिफ दारद बुते ऐ यारे मां। राजन में तू राजा कहिए भूमन में पूमा, ठाकुर में ठकराई तेरी कौमन सिर कौमा। पिता मेरो बड़ो धनी अगमा, उस्तत कौन करी जे करते देख रहे बिस्मा। बस तेरी उस्तत असी इसलिए करदे हां कि तेरे चरणा नाल साडी सांझ बन जावे, साडी चोली ए दात पा दे के रस रस तेरे गुण गाउंदे रही।

पर पिता गुरु रामदास ने ना तो कोई सुनिया भेजिया ना ही वापस बुलाया ना कोई चिट्ठी पाई। मन तड़फदा अगे ता एक मिनट भी

मेरा मन तड़फदा दर्शना वास्ते रहन नहीं आंदा पहला पैरा लिखिया लिख के भेज दिता पर कोई जवाब नहीं आया दूसरी चिट्ठी लिखन बैठे कहन लगे हुण की लिखा तड़फ ता लिखी पर जवाब नहीं आया फिर ख्याल गया ऐ मना ओ धरती कैडी भागा वाली जिथे मेरा पिता गुरु आप बैठे उथे दे रहन वाले जीव किन्ने

मेरी एक सच्ची सिखिया ले लो। आख्या महाराज केड़ी सिखिया ओ, साहब जी कहते हैं जेड़े कर्म तुसी कर रहे हो, जे चंगे कर्म कर रहे हो वह भी तुहाडे लिखे जा रहे, जे मंदे करोगे वह भी लिखे।

गौड़ी चेती, शब्द भी गौड़ी चेती श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच उसी राग विच ए शब्द उचारिया है भगत जी ने। ऊपर सिरे लेख है गौड़ी चेती भगत कबीर जी का।

रो लिया रो रो के मेरे तन गुरु नानक पातशाह ने चरना रुप्त हो पातशाह बस अदूर कहन लगे मरदाने बख्शीए मरदाने ने कहा महाराज अगे मेनू पुछ के बख्श दो ये तो थोड़ा बिरदा जो शरण आवे तो तंस लावे ए बिरद सोनी संदा तो हजूर ने अमे दृष्टि नया तो क्या करोड़िए फिर जप सतनाम संसार रोगी नाम करोड़िए नाम जपे नाम जपेगा तेरा मन पवित्र गाड़े बाणी पड़े नाले सत्संग भी करिया करते करोड़िए तेन नरंकार ने माया दिती है दान पुण्य को आज माया भी कर सत हूं करोड़िया से गल च पला पा के कहता पातशाह एक बेनती मेरी करवा केड़ी पातशाह नाल ही मेरा पिंड हूं मेरे चार चलते मैं थोड़ी तो सेवा तू प्रसाद छकाव दुध पिलाव अदूर कह लगे क्यों मरदाने चलिए मरदाने ने कहा महाराज भी कोई पूछने वाली गल नहीं चलो हूं तो सिख बन गया कौड़िया अदूर कह लगे मरदाने अजे सिख नहीं बने पातशाह किस तरह अदूर कह लगे मरदाने अजे नु सिखी दिती सिखी की है हुकुम ते जे हुकुम मनेगा तो फिर ही साडा सिखा सिखी गल्ला विच नहीं गल्ला दी सिखी कमजोर सिखी का स्वरूप की है उस वाहिगुरु का हुकुम हुकुम मनिए होवे परवान ता खसमे का महल करोड़िए जो तेनू असी उपदेश दिता है ओनू कमा जे तू कमाएगा फिर अरदास करी असी आवांगे तेरे तक प्रसाद ही छकांगे ते आके वाहिगुरु दे नाम का पवित्र जो अमृत है ओदा प्रवाह और करोड़िए चरना ते कहते पातशाह मैं गरीब तेरी बख्शिश कर दी है हजूर कहन लगे करोड़िया बख्शिश मेरे वाहिगुरु की जिस वेले बख्शिश का समा आना है फिर जिना संभाल लेना है वह पाए करोड़िए बख्शिश होगी थोड़े तो भी गुरु की बख्शिश होगी बख्शिश वाला समा मिले बख्शिश तो शरीर ही है बाबा आनंद सिंह जी महाराज बचन करते सन उस वाहेगुरु की सदा ही मेहर है पर उस मेहर को संभाल लेना यह वही आप जिन्हों के भागा बच्चे बस दो वेले आके आप कीर्त नहीं दो जिन्हों से गुरु जी कई आने ही नहीं कई नावे पाई जाते पर कई ऐसे प्रेमी भी हैं जिन्होंने किसी कीर्त च नागा नहीं पाया जो कीर्तन च नागा नहीं पाएगा तो गुरु नानक की बख्शी से ही नागा नहीं पाएगा चौड़िया ये मालक की दात ये जोर की चीज नहीं न्यूयॉर्क तू टेलीफोन आया है कदों वापस आ रहे हो छेती आ जाओ किसी पास उड़ीक है तो कई गुरु प्यारे थोड़े वर्गे माई पाई कीर्तन का अमृत पी तो यह दात गुरु की अपनी है हजू कह लगे मरदानिया रवाब चुकी तो शब्द ही अकेली तक पर मरदानी ने रवाब चुकया तो बाबे ने सोने गले चब्दता की किया और सारे पढ़िए कीर्तन की समाप्ति करिए।

0: भाव करी सी जो गुरु का उपदेश साहबा ने करोड़िए से बख्श और असी भी इस उपदेश हृदय च बसाइए कमाई करिए जो साडा भी जीवन सफल फिर सानू सदा वास्ते की मिलेगा साडा ये लोग सुखी है पर लोग सुहे ने हर पल आपे मिले और कैरी सात संगत जिथे होशकर दिया संत गुरुद्वारा साहब के प्रबंधकों के उद्यम नाल दास रोज आप जी के दर्शन करता है ते आप शब्द द्वारा गुरु नाल तो अज गुरु दरबार साहिब अमरीकन सिंह के गुरु प्यारा जत्था ये भी इतने ये भी साढ़े वीर अनुभाई गुरु नानक पिता है एक पिता एक उसके उपार के तू मेरा गुरु जो गुरु नानक का सिख गुरु की मर्यादा विच रहेगा भाई उसे कोई विस नहीं है सारे बापू के बच्चे हैं तो गुरु प्यारे भी आए हैं तो शब्द एक शब्द की हाजरी वो लगवाएंगे उस तो उपरंत कीर्तन की समाप्ति अमृतवेले का प्रोग्राम भी है कल शाम जिस तरह रूटीन कह दीजिए उसी तरह कीर्तन सन गुरु नानक पातशाह आप जी की महान महान बख्शिश द्वारा बरकरदार गुरमुख प्यारे गुरसिख आप जी ने बख्शे खजाने विचों कीर्तन की भेद शब्द आदर करते डालर अरदास कराते मेरे अंतर जाने गुरु नानक जी आप अपने सिखा बच्चिया सिखी जीवन सदाचार दिया कला बख्शो आओ फतेह बुलाओ प्यार
1: वाहेगुरु जी का खालसा
2: Thank you.

इधर माता तृप्ता जी अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी राह पे देखते और एक पासे भाई अजय राम जी और एक पासे रायपोए की तलवंडी का राजा राय बुलार और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया है। मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पे थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदिया होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हो पर सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखिल होए और आंदिया धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई सत करतार। इस सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे। धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओह धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंड ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे हैं तैनू बड़ा मैं झिड़किया तैनू मैं एक बारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल। धन गुरु नानक साहब माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पा लै आप ही फिर कह उठते ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलिया सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग घुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्मदिन ते चोला सी के रख दी है। ते साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और ओ प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लैण

जद इतने बचन कहे भैन जी है बेबे नानकी तुसी वड्डे हो तुसी मेरे पैरां ते मत्था टेको ते नहीं हो सकदा। सात संगत एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ते वखरी गल है इन्हां गल्लां नूं कोई मन्ने भावें ना मन्ने पर सुख तां मनण विच ही है। हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं कहा मरदाने आ हुण तुसी जा के भाई अजय राम जी नूं लै के आओ। शहर वासियां नूं पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है। पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछदे ने बेटा किथे चले। साहब जी कहने लगे मरदाना भाई अजय राम नूं वैराग विच उठा नहीं सके। धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन। अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो। धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ए प्यार भागा नाल मिलता है और इस प्यार नूं ओही जानता है जिसने ये प्यार किया। भगत कबीर जी कहंदे ने सो कत जाने पीर पराई जां के अंतर दर्द ना पाई। भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको ही गल नजर आती। भगत रविदास वो भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब जी कहंदे ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले वीर कि प्रेमा भगती दे तीर जड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने उही जाने

हमारी जेबा एक रम हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जमे आ हर तुम बड अगम अथाह।

गुरु नानक दे दर दी सेवा कितनी महान है। इंद्रपुरी लख राज लखां वेरां इंद्र दी पदवी प्राप्त करके जितनियां खुशियां प्राप्त होंदियां हन उतनी गुरु के सिख नूं गुरु घर दा पानी ढो के दातां प्राप्त हो जांदियां हन।

कितनी बख्शिश है। गुरु के सिखां ते जो गुरु नानक दे दर दा पानी ढो के गुरु के सिखां नूं इशनान कराउंदे हन। भाई साहब गुरदास जी कह रहे हैं ऐसे गुरसिखां नूं पांच वार गंगा दी यात्रा कोई कर लवे, पांच वेरा पराग राग जाके इशनान करे, उस थां दी यात्रा करके आवे, इतना पुन है एक गुरु सिख नूं इशनान कराउण दा। उचारण करो श्री वाहिगुरु।

अश्वमेध जग फल सिख को जीवाएगा। एक बेर हां प्यार दे नाल गुरु के सिख नू पानी पिला देना, बड़े प्यार दे नाल प्रसाद छका देना। हजूर कहंदियां उस गुरसिख दा अश्वमेध जग हो गया, समझो जिसने एक नू प्रसादा छका देता है।